त्रिपटन बैग अफ द इयर 2024 र 2025 को सम्मान सिटिजन्स बैंक विश्वास को नाम सिटिजन्स बैंक हजुर को प्रगति को सहयात्री।

0: मौसम अत्याधिक हावाहुरीको भएकाले बन्डडेलको जोखिम निस्कन सक्छ, त्यसकारण सतर्क रहनुहोस्।
1: तसर्थ वन क्षेत्रमा मानिसहरू हिँड्ने बाटोको दायाँ बायाँ रहेका पात पतिङ्गरहरू जस्ता सजिलै बल्न सक्ने पदार्थहरूलाई हटाई सफा राखौं।
2: वन क्षेत्रमा हिँड्दा चुरोट बिडीका ठुटाहरू जथाभावी नफालौ।
0: डडेलो लाग्न सक्ने क्षेत्रहरूको पहिचान गरी निगरानी बढाऊ।
1: जानी जानी डडेलो लगाउने व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरी कानूनी कारवाही अगाडि बढाऊ।
0: वन क्षेत्रमा आगो लागेको देखे तुरुन्तै नजिकैको वन कार्यालय वा प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गरौ।
2: सुन्नुहोस् त,
1: वन जंगलमा आगजनी गर्ने र डडेलो लगाउनेलाई दण्ड, जरिमाना र कैदको व्यवस्था पनि रहेको छ है।
3: वन डडेलो रोकौ, वन जंगल र जैविक विविधताको संरक्षण गरौ।
0: अनुरोधक
4: श्री शक्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति मोर्मी कपिल वस्तु, अध्यक्ष नाथराम चौधरी थारू, मोबाइल 9847883438 तथा समस्त वन उपभोक्ता समिति परिवार।
0: यो मौसम अत्याधिक हावाहुरीको भएकाले वन डडेलको जोखिम निस्कन सक्छ, त्यसकारण सतर्क रहनुहोस्।
1: वन क्षेत्रमा मानिसहरू हिँड्ने बाटोको दायाँ बायाँ रहेका पात पतिङ्गरहरू जस्ता सजिलै बल्न सक्ने पदार्थहरूलाई हटाई सफा राखौं।
2: वन क्षेत्रमा हिँड्दा चुरोट बिडीका ठुटाहरू जथाभावी नफालौ।
0: डडेलो लाग्न सक्ने क्षेत्रहरूको पहिचान गरी निगरानी बढाऊ।
1: जानी जानी डडेलो लगाउने व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरी कानूनी कारवाही अगाडि बढाऊ।
0: वन क्षेत्रमा आगो लागेको देखे तुरुन्तै नजिकैको वन कार्यालय वा प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गरौ।
2: सुन्नुहोस् त,
1: वन जंगलमा आगजनी गर्ने र डडेलो लगाउनेलाई दण्ड, जरिमाना र कैदको व्यवस्था पनि रहेको छ है।
3: वन डडेलो रोकौ, वन जंगल र जैविक विविधताको संरक्षण गरौ।
0: अनुरोधक
5: अध्यक्ष गणेश बहादुर सिंह ठपुरी, श्रृङ्गी घाट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, दुम्ची कपिल वस्तु। सम्पर्क नम्बर 9857552001।
6: न डराओ बाबू, न डराओ। साँप का कुछ न करे थे, साँप कुछ नहीं करत है। अच्छा वो देखो, वो आपन रास्ता चली गवा कुछ की ही तो, और सब सांप विशालु नहीं होते है ना।
7: विशालु हो कि नहीं, कैसा चिन्ह है अम्मा?
6: हाँ बाबू, नेपाल में मिले वाले विशालु सांप के बारे में सुनो। एक ठो होते करेंट जो प्राय रात के समय में घर भीतर हल सकत है। एक दस एक बाद ना ही पिरा सकत है, लेकिन दस एक बाद शरीर के भाग न चले मेर से सांस लिए कठिन हुए मेर से पक्षघात हो सकत है। और ऐसे होते हैं गोहुअन अर्थात फेटारा जोन बहुत रिसहा मेर के होते हैं और फाड़ बनावत हैं। गोहुअन सांप दिन या रात दोनों ओकर दिखाते हैं और प्राय सवेरे संध्या के दिखाए वाले एकरे दशक बादो पक्षघात हो सकत है।
7: अच्छा,
6: और दूसरे होते हैं हरियो जात के सांप, एकरे दशक बाद दस लिहा भाग फूल जात है और बहुत पिरात है, खून पातर हो के रक्त श्राव हो सकत है। और वही मेर से हमरन के देश की तराई के सब भूभाग में मिले वाले गंडाइस जौने के ऊपर बाघ के जिस बुट्टा होत है, एकरी दसाई के बीमारियां कमे मात्रा में मिलत है, लेकिन एकर दसाई एकदम खतरनाक होत है।
8: बरसायाम और बाली काटे समय में सांप के कटाई अथवा दसाई के घटना सब बहुते होत है। बाढ़ और प्राकृतिक प्रकोप सब के कारण सांप के वासस्थान नष्ट होत के सांप दसाई के घटना सब अधिक होत मिलत है।
9: ढेर जैसन सांप के दसाई हानिकारक नहीं होत है, तब वो सांप दसिन लीज तो तुरंत निर्वय के उपचार केंद्र में चल जाए चाहे।
8: विश्वसनीय और सही जानकारी प्राप्त करे और नकचेरे के उपचार केंद्र कहाँ है कह के पता लगावे आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org में जाए के आवश्यक जानकारी ले सका जात है।
10: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
11: मार्नु आमा मार्नु, नत्र चोक्छ यसले।
12: नात्यौ छोरा, सर्पलाई केही नगरेसम्म सर्पले केही गर्दैन। ल ऊ आफ्नो बाटो गइहाल्यो नि, केही गर्यो त? अनि सबै सर्प विषालु पनि हुँदैनन्।
11: विषालु हो कि होइन कसरी चिन्ने त आमा?
12: ल नेपालमा पाइने विषालु सर्पका बारे सुन। एउटा हुन्छ करेत, जुन प्राय रातिको समयमा घरभित्र छिर्न सक्छ। यसले टोक्दा नदुख्न सक्छ, तर टोकेपछि सासै फेर्न नसक्ने गरी पक्षघात हुन सक्छ। अर्को हुन्छ गोमन, जो निकै रिसा खालको हुन्छ र फणा बनाउँछ। गोमन सर्प दिन वा रात दुवैमा देखा पर्ने र यसले टोक्दा पनि पक्षघात हुन सक्छ। अनि अर्को हरियौ जातिको सर्प, यसले टोक्दा टोकेको भाग सुन्निन्छ र असाध्यै दुख्छ, रगत पनि पातलो भई रक्तस्राव हुन सक्छ। त्यसै गरी हाम्रो देशको तराईको सबै भूभागमा पाइने बाघको जस्तो बुट्टा हुने बाघी सर्प, यसले डसेको बिरामी कमै मात्र पाइन्छ, तर यसको डसाई एकदम खतरनाक हुन्छ।
13: वर्षायाम र बाली भित्राउने समयमा सर्पको टोकाई अथवा डसाईका घटनाहरू धेरै हुने गर्छन्। बाढ़ी र अरू प्राकृतिक प्रकोपहरूको कारणले सर्पको वासस्थान नाश हुँदा सर्प डसाईका घटनाहरू बढ़ी हुने गरेको पाइन्छ।
14: धेरै जसो सर्पका डसाई हानिकारक हुँदैनन्, तापनि सर्पले डसिहाले तुरुन्तै नजिकैको उपचार केन्द्र गइहाल्नुपर्छ।
13: भरपर्दो र सही जानकारी प्राप्त गर्न र नजिकको उपचार केन्द्र कहाँ छ भन्ने पत्ता लगाउनको लागि आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org अर्थात् snakebitenepal.org मा गई आवश्यक जानकारी लिन सकिन्छ।
10: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेण्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।

0: अनुरोध
1: अध्यक्ष मुक्त बहादुर कार्की मनकामना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह बारगंगा दुई नंद नगर कपिल वस्तु संपर्क नंबर 98 470 83 104।

0: वनमा जाँदा सलाई लाइटर जस्ता आगोजन्य वस्तुको प्रयोग नगरौं। वन छेउमा स्याउला झारपात नजलाऊ। वनमा आगो लाग्नै नदिऊ। लागिहालेमा होसियारी पूर्वक आगो निभाइहालौ।
1: अनुरोध राख्दै डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तु गौतम दत्त चन्द्रौटा कपिलवस्तु।

0: मौसम अत्याधिक हावाहुरीको भएकाले बन्डडेलको जोखिम निस्कन सक्छ, त्यसकारण सतर्क रहनुहोस्।
1: वन क्षेत्रमा मानिसहरू हिँड्ने बाटोको दायाँ बायाँ रहेका पाप पतिङ्गरहरू जस्ता सजिलै बल्न सक्ने पदार्थहरूलाई हटाई सफा राखौं।
2: वन क्षेत्रमा हिँड्दा चुरोट बिडीका ठुटाहरू जथाभावी नफालौं।
3: डडेलो लाग्न सक्ने क्षेत्रहरूको पहिचान गरी निगरानी बढाऊ।
1: जानी जानी डडेलो लगाउने व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरी कानूनी कारवाही अगाडि बढाऊ।
3: वन क्षेत्रमा आगो लागेको देखे तुरुन्तै नजिकैको वन कार्यालय वा प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गरौ।
2: सुन्नुहोस् त,
1: वन जंगलमा आगजनी गर्ने र डडेलो लगाउनेलाई दण्ड, जरिमाना र कैदको व्यवस्था पनि रहेको छ है।
4: वन डडेलो रुकौ, वन जंगल र जैविक विविधताको संरक्षण गरौ।
3: अनुरोध
5: अध्यक्ष गणेश बहादुर सिंह ठकुरी, श्रृंगी घाट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, गुम्ची, कपिल वस्तु। सम्पर्क नम्बर 98570052001।
0: यो मौसम अत्याधिक हावाहुरीको भएकाले बन्डडेलको जोखिम निस्कन सक्छ, त्यसकारण सतर्क रहनुहोस्।
1: वन क्षेत्रमा मानिसहरू हिँड्ने बाटोको दायाँ बायाँ रहेका पाप पतिङ्गरहरू जस्ता सजिलै बल्न सक्ने पदार्थहरूलाई हटाई सफा राखौं।
2: वन क्षेत्रमा हिँड्दा चुरोट बिडीका ठुटाहरू जथाभावी नफालौं।
3: डडेलो लाग्न सक्ने क्षेत्रहरूको पहिचान गरी निगरानी बढाऊ।
1: जानी जानी डडेलो लगाउने व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरी कानूनी कारवाही अगाडि बढाऊ।
3: वन क्षेत्रमा आगो लागेको देखे तुरुन्तै नजिकैको वन कार्यालय वा प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गरौ।
2: सुन्नुहोस् त,
1: वन जंगलमा आगजनी गर्ने र डडेलो लगाउनेलाई दण्ड, जरिमाना र कैदको व्यवस्था पनि रहेको छ है।
4: वन डडेलो रुकौ, वन जंगल र जैविक विविधताको संरक्षण गरौ।
3: अनुरोध
1: अध्यक्ष झलक मल्ल ठकुरी, शिव मन्दिर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, बुङ्ची, कपिल वस्तु। सम्पर्क नम्बर 98570050714।
6: नरेश भैया, आपके फोन आवे के बाद हम दौड़ के चली आये। भौजी कहाँ हिन?
7: वही खटिया पर सूती हिन बहिनी, वहाँ चला जाए ना।
6: भौजी आपका कहाँ डसीली? घर के आसपास साफ सुघर रखा गया है, तब वो आपका सपोर्ट डसीली।
8: हाँ बहनी, यही एरिया से ऊपर दसीस है। आपके भैया एम्बुलेंस का खबर तो कहीं है, पता नहीं कब आई।
6: ना घबरावा जाए भौजी, हमरे साथ में हन, आपका कुछ नहीं हुई, बल्कि गोर ना चलावा जाए। और नरेश भैया एम्बुलेंस आवे के समय लाग सकत है, नक्सरवे की केहू के मोटरसाइकिल है तो वही पर लेके भौजी का सर्पदंस उपचार केंद्र ले जाए के तैयारी करा जाए।
7: यही समय पर खाए वाला चीज नहीं देख चाहिए स्वयंसेविका बहिनी।
6: जी हाँ, चिकित्सक जब तक न कहे तब तक बीमारिया का कुछ खाए के नहीं दे के चाहिए।
9: सांप डस लिए के बाद सहज वातावरण बनावे और सांप डस लिए अंग का स्थिर बनावे के प्रयास करे के चाहिए। फट्टी बांध के सांप डस लिए जगह का ढेर हिले से रोक सका जात है। कसा कपड़ा, गहना जेवर, घड़ी, पेटी, अंगूठी आदि खोल दिए या ढील कर दिया जाए। बीमरिया अकताए गए पर और समस्या हुए के नाते बीमरिया का शांत रह के सहयोग करे के चाहिए। कितना पे लोग सांप डस लिए जगह से ऊपर रसरी से कस के बांधे के काम करत हैं। ऐसा करत के रक्त संचार में समस्या हो सकत है, जौने से सांप डस लिया शरीर के भाग काट के फेंके के अवस्था समेत आ सकत है।
10: सर्पदंश संबंधी विश्वसनीय और सही जानकारी प्राप्त करे के और नजदीक के सर्पदंश उपचार केंद्र कहाँ है पता लगावे के आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में देख सका जात है।
11: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय, इपिडियोमोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
12: तपाईँको फोन आउने बित्तिकै म दौडेर आएकी। खै भाउजू कता हुनुहुन्छ?
13: त्यहाँ फलैचामा सुतेकी छिन् बहिनी, हिँड्नुहोस् न उतै।
12: भाउजू कहाँनिर टोक्यो तपाईँलाई? घर वरिपरि त सफासुग्घर राख्नु भएको रहेछ, तर पनि टोक्नु भएछ है तपाईँलाई?
14: यहाँ कुर्कुचानीले टोकेको हो नानी, उहाँले एम्बुलेन्सलाई खबर त गर्नु भएको छ। कति बेरमा पो आइपुग्ने हो?
12: नातिनुहोस् है भाउजू, हामी छौँ, तपाईँलाई केही हुँदैन, बरु खुट्टालाई नहल्लाउनुहोस् र नरेस्तै एम्बुलेन्स आउन समय लाग्ने हुनसक्छ। नजिकै कसैको मोटरसाइकल भए त्यसैमा राखेर भाउजूलाई सर्पदंश उपचार केन्द्र लाने तयारी गर्नुपर्छ।
13: यति बेला त खाली कुरा पनि दिनु हुँदैन होइन त स्वयंसेविका बहिनी?
12: हो हो, तपाईँले ठिक भन्नुभयो, चिकित्सकले नभनेसम्म बिरामीलाई केही पनि खुवाउनु हुँदैन।
15: सर्पले टोक्ने बित्तिकै सहज वातावरण बनाउने र सर्पले टोकेको अङ्गलाई स्थिर बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ। टम्म कसिएको कपडा, गरगहना, घडी, पेटी, औठी आदि भए फुकाली दिएर खुकुलो गराउनुहोस्। बिरामी आत्तिए झन समस्या हुने भएकोले बिरामीलाई शान्त रहन सहयोग गर्नुपर्छ। कतिपयले सर्पले टोकेको ठाउँ भन्दा माथि डोरीले कसिलो गरी बाँध्ने पनि गर्छन्। यसो गर्दा रक्त सञ्चारमा समस्या हुन सक्छ, जसले गर्दा सर्पले डसेको शरीरको भाग काटेर फाल्नुपर्ने अवस्था समेत आउन सक्छ।
16: भरपर्दो र सही जानकारी प्राप्त गर्न र नजिकको उपचार केन्द्र कहाँ छ भन्ने पत्ता लगाउनको लागि आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org अर्थात् snakebitenepal.org मा गई आवश्यक जानकारी लिन सकिन्छ।
11: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।

0: 89.6 MHz।
1: हिमाल पहाड़ तराई।
2: प्रिय श्रोता, अब प्रसारण हुँदैछ TWR नेपालको प्रस्तुति कार्यक्रम जागृति। कार्यक्रम सुनेर आशीषित हुनुहोस्।

0: नमस्ते नमस्ते। हाँ सब ठीक है। अरे टेंशन लेने का नहीं, बात तो जरूर बन जाएगी। अच्छा अच्छा बिल्कुल ठीक है। और नहीं तो क्या, चारों तरफ देख रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आप ऐसा कीजिए, आप जरा बाद में फोन कीजिए। अच्छा अच्छा बाय। कांछा, ओ कांछा।
1: जी मैम साहब।
0: अरे जी जी क्या लगा रखा है, चल जा एक पान लेके आ।
1: अच्छा मैम साहब।
0: अरे भाई अभी तक ये जंगे नहीं आया, क्यों इतना लेट किया उसने? मेरे को तो बोला था जल्दी आऊंगा, मगर अब तक नहीं आया।

0: नमस्ते भाई जी।
1: अरे नमस्ते नमस्ते, तो मैं तो अब भी तुम्हारे बारे में सोच रही थी।
0: क्यों भाई जी?
1: बहुत लेट किया तुमने इसलिए। अरे तुम तो अकेले आए हो क्या?
0: नहीं भाई जी, जंगी कभी अकेले नहीं आता है। जब जंगी आता है माल लेकर ही आता है।
1: अच्छा अच्छा, तब बोलू मैं, कहाँ है?
0: दो नंबर रूम में छोड़कर आया हूँ।
1: माल तो अच्छा है ना?
0: माल में कोई कमी नहीं है, पहला नंबर माल है।
1: अच्छा तब बोलो दाम कितना है?
0: आपकी इच्छा भाई जी, मेरा माल कैसा होगा वो तो आपको पता है।
1: अबे बोलना यार।
0: अच्छा ठीक है, एक दीजिए ना।
1: अच्छा ये चेक लेकर जाना।
0: ठीक है मैं जाता हूँ।
1: और सुनो, अब की बार आओगे तो दूसरी माल लेके आना। कब आओगे?
0: एक महीने की बात।
1: अच्छा ठीक है।
2: मैम साहब पान।
1: अच्छा तुम दो नंबर रूम पर जाना, और अभी जंगे ने एक माल लेकर आया है उसे मेरे पास लेकर आना।
2: जी मैम साहब।

0: अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ उधर सब ब्लड चेक हो गया ना? क्या दो नंबर की लड़की को HIV हुआ? अच्छा अभी मैं बाहर करती हूँ उसे। कांता
1: जी मैम साहब।
0: हाँ वो दो नंबर बेड की लड़की को जरा इधर लेके आओ।
1: अच्छा मैम साहब।
0: ओ लड़की तुम अब मेरे काम की लायक नहीं रही। क्यों भाई जी तुम सुनना चाहती हो हा? तेरे ब्लड में HIV है इसीलिए तुम अब मेरे काम की लायक नहीं हो।
2: नहीं मैम साहब मैं जाना नहीं चाहती। अब मैं अलग कहाँ जाऊंगी? मेरे को ऐसा मत करना मैम साहब।
0: तू बैठ साली कांछा। ए कांछा चल इसे धक्के मार के निकाल दे यहाँ से।
1: ठीक है मैम साहब।

0: दादू एक कप चाय के 30 रुपया कतरा महंगा। आजकल तो कुछ चीज हम फिर पैसा वसूल नहीं हुई ना।
1: उठ जे भाई, अब एनसेल में पैसा वसूल
0: हो का?
1: हो जे, एनसेल में आप खाली 18 रुपया में एक दिन लग 30 मिनट ऑल नेपाल कॉल संगे मज्जा से बटवा सकती। तब नहीं हुई ते पैसा वसूल,
0: गजब बात है। अब मई फिर पैसा वसूल करें।
1: आजू *123# डायल करी या एनसेल ऐप में जाके ई पैक खरीद करी। एनसेल नेपाल के लग।
2: नए नेपाल निर्माण को आधार निरंतर सुन्दै रहनुहोस् सामुदायिक रेडियो बुद्ध आवाज 89.6 MHz।

0: रेडियो बुद्ध आवाज 99.6 MHz मा सुन्न नभुल्नु होला।
1: यति बेला साँझको 7 बज्यो।

भेको का विभिन्न होम अप्लायंस को खरीद में कैशबैक तथा शेयर शॉट गिफ्ट। वॉशिंग मशीन में 6 केजी एरियल मैटिक, डिशवाशर में वॉशिंग टैबलेट, एयर कंडीशनर में इंस्टॉलेशन, फ्री स्टैंडिंग ओवन में प्रेशर कुकर। नागरिकता मात्र भए पुग्छ, सहज EMI मार्फत खरीद कर सकता।

निरन्तर सुन्दै रहनुहोस् सामुदायिक रेडियो बुद्ध आवाज, नयाँ नेपाल निर्माणको आधार। निरन्तर सुन्दै रहनुहोस् सामुदायिक रेडियो बुद्ध आवाज 89.6 मेगाहर्ज।